तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff communication station.
1: The following is a paid program. The views and opinions do not represent those of CKJS or its advertisers.
2: अच्छा, हर कोई आजकल कहता सुनाई देता है कि कंपटीशन का युग है, यू गॉट टू फाइट एंड कम्पीट एट एवरी स्टेप. पर मैं नहीं मानती इस बात को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जीतना तो बेहद आसान है. जी हाँ, बट हैरान नहीं हूँ, आई गिव अ रीजन एज टू व्हाई. वेल, बिकॉज आई बिलीव कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है देन वॉक एन एक्स्ट्रा माइल. उस एक्स्ट्रा माइल में तो कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, जितना सोचें कि आपको पे किया जाता है, उस पे में आप थोड़ा सा ज्यादा और ज्यादा लगन के साथ काम करने को तैयार हैं, एंड आई एम श्योर 99% लोग तैयार नहीं हैं. अब सोचें कि अगर आप तैयार हैं तो आपका कंपटीशन तो सिर्फ उस 1% के ही साथ है ना. सो कंपटीशन कहाँ रहा फिर? वेल, दिस वर्जन, दिस पर्सपेक्टिव, डजंट दैट साउंड वेरी सिंपल एंड बेटर नाउ?

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: कामयाबी कोई ऐसे ही गिफ्ट में मिलने वाली चीज नहीं है. इसके लिए तो बहुत सारी तैयारी और कैरेक्टर चाहिए. बिना शक हम में से हर कोई जीतना चाहता है, पर असलियत में जरा अपने आसपास नजर घुमाएं, गिन कर देखें कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस जीत की तैयारी में हिस्सा लेते हैं, यानी कि मेहनत करते हैं. बहुत कम, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा सैक्रिफाइस और सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग मेहनत में कम और किस्मत में ज्यादा यकीन रखते हैं. बट हेनरी फोर्ड की इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, दैट द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट.

0: लिंकन रोड कभी गॉर्डन रोड लंकन रोड लैमिंगटन रोड कैडर रोड कभी पेडर रोड चर्नी रोड कभी हर्टन रोड टर्नर रोड कभी कार्टर रोड
1: कुड़िये माड़ा जा टाइम तो देखी मेरा तो कल्चर ऑफ पंजाब सुनना रह गया।
2: कोई गल नहीं, हुण सुनो कल्चर ऑफ पंजाब साडे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ पंजाब ते।
3: कल्चर ऑफ पंजाब हुण यूट्यूब

0: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
1: There's a wonderful book titled Charming the Brain May Allow Changes by Dale Doughton. इस किताब की खूबी ये है कि इसमें थोड़ा अलग स्टाइल में लाइफ को जीने के लिए कहा गया है। अब देखें ना, न्यू ईयर पर हम सब रेजोल्यूशंस बनाते हैं, ढेरों प्रॉमिसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, इस साल मुझे हर हालात में वेट लूज करना है या अच्छे ग्रेड्स लेकर पास होना है। पर इस किताब में कहा है कि नए एक्सपेरिमेंट्स में जो मजा है वो वही पुरानी बोरिंग रेजोल्यूशंस में नहीं। बिकॉज़ समटाइम्स इट्स गुड टू फॉरगेट द कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एंड इंस्टेड फॉल इन लव विद योर करियर, फॉल इन लव विद योर वर्क।

लगता है कि जिंदगी एक लंबी सी कहानी के लिए बहुत छोटी है, इसलिए एक छोटी सी बात ये है कि कंप्यूटर की तरह ही जो बातें आप अपने दिमाग में फीड करेंगे, स्टोर करेंगे, रिजल्ट्स भी वैसे ही होंगे। अब देखे ना, मेरे किसी अपने ने मुझे हर्ट किया, दैट डजंट मीन दैट एवरीबॉडी अराउंड मी इज बैड। आप ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना कि दैट्स ओनली वन पर्सन, आई एम लवेबल एंड आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ लविंग पीपल इन माय लाइफ हु विल नेवर हर्ट मी। वेल, दैट्स द बेस्ट वे टू सी द थिंग्स अराउंड यू, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई फील।

वक्त तो फिसल ही रहा है हाथ से, पर उसके साथ साथ जो एक और चीज जा रही है वो है रिश्ते। आज हर खुशी है लोगों के दामन में, पर हंसी के लिए ही वक्त नहीं। दिन रात दौड़ती दुनिया में जिंदगी के लिए ही वक्त नहीं। दोस्तों के नाम तो भरे पड़े हैं मोबाइल्स में, पर सिर्फ दोस्ती के लिए ही वक्त नहीं। सच माने तो पैसों की इस दौड़ में ऐसे दौड़ रहे हैं हम कि थकने तक के लिए वक्त नहीं। आज पराए जज्बातों की, एहसासों की क्या कद्र करेंगे जब खुद अपने सपनों के लिए ही वक्त नहीं।

काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बिदारणा। नाम जपत मन निर्मल होवै सूखे सू गुदारना। भगत सरण जो आवै प्राणी तिस इहां उहां ना हारना। सुख दुख इस मन की बिरथा तुम ही आगे सारना। तू दाता सबना जिया का अपन किया पालना। अनक बार कोट जन ऊपर नानक वंजे वारना। राम कली महला पंजवा अष्टपदी एको ओंकार सतगुर प्रसाद। दर्शन पेटत पाप सब नासै हर स्यों दे मिलाई। मेरा गुर परमेसर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सखाई। रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत धूर मुखलाई। पतत पुनीत की एकन पीतर अज्ञाना देर वंजाई। करण कारण समरथ स्वामी नानक ते शरणाई। बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए एक शब्द लिवलाई। अंधकूप बिख्याते काढ़ो साध शब्द बने आई। जन्म मरण का सहसा चूका बाहुड़ कतो ना ताई। नाम रसायण एहो मन राता अमृत पी त्रिपताई। संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वस्या जाई। पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिन आन ना पाई। नाम निधान पाया वड भागी नानक नरक ना जाई। काल सियाणप उकतना मेरी पूरे गुरु कमाई। जप तप संजम सोच है सोई आपे करे कराई। पुत्र कलत्र महा बिखिया मैं गुरसाचै लाए तराई। अपने जीतें आप संभाले आप लिए लड़ लाई। साज धर्म का बेड़ा बांधया पवजल पार पवाई। बेसमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई। अकाल मूर्त अजूनी संपो काले अंधकार दी पाई। अंतरजामी जियन का दाता देख तृप त्यागाई। एक अंकार निरंजन निरपो सब जल थल रहा समाई। भगत दान भगता को दीना हर नानक जाचै माई। राम कली महला तीजा राम कली महला पंजवा सलोक। सिखो शब्द प्यारे ओ जन्म मरण की टेक। मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक। मंत्रण राता राम प्यारे हर प्रेम भगत बने आई संतो। सतगुर खेप निबाही संतो हर नाम लहा दास कौ दिया सगली कृष्ण उलाही संतो। रहाओ खोजत खोजत लाल एक पाया हर कीमत कहन ना जाई संतो। चरण कमल स्यों लागो ध्याना साचै दर्श समाई संतो। गुण गावत गावत पए निहाला हर सिमरत तृप्त आगाई संतो। आत्म राम रविया सब अंतर कत आवै कत जाई संतो। आदि जुगादी हैपी होसी सब जिया का सुखदाई संतो। आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रया सब ठाई संतो। मीत साजन माल जोबन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो। राम कली महला पंजवा मान बच कर्म राम नाम चितारी। कुमन केर महात बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी। रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन पए दुष्टारी। जिसते लागे इतने निवारे प्रभ जीव अपनी कृपा तारी। उदरे संत परे हर सरणी पच बिन से महा अहंकारी। साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम आधारी। ना कोई सूर ना कोई हीणा सब प्रगति जो तुम्हारी। तुम समराथ्या काथा गोचर रव्या एक मुरारी। कीमत कौन

0: माया पाया हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए मुल ना पाया जाए किसै विटो रहे लोक बिललाए ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनो सिर सोपीऐ विचों आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहै हर वसै मन आए हर आप अमुलक है भागत ना के नानका जिन हर पलै पाए हर रास मेरी मन वनजारा हर रास मेरी मन वनजारा सतगुर ते रास जानी हर हर नित जप्यो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी एहो तंत ना मिलिया जिन हर आपे पाणा कहे नानक हर रास मेरी मन होवा वनजारा ए रसना तू अन रसराच रही तेरी प्यास ना जाए प्यास ना जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्लै ना पाए हर रस पाए पल्लै पीए हर रस बहुड़ ना तृष्णा लागै आए इहो हर रस करमी पाईए सतगुर मिलै जिस आए कहे नानक होर अन रस विसरे जा हर वसै मन आए ए शरीरा मेरिया हर तो मैं जोत रखी ता तू जग मैं आया हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मैं आया हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जग दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत होवा चलत नगरी आया कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग मैं आया मन चाओ भया प्रभागम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापै गुर चरण लागे दिन सपागे अपना पिर जापै अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कहे नानक प्रभ आप मिलिया करण कारण जोगो ए शरीरा मेरिया इस जग मैं आए कह क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग मैं आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कह नानक एहो शरीर प्रमाण होवा जिन सतगुर स्यों चित लाया ए नेत्रो मेरे ओ हर तुम मैं जो धरी हर बिन अवर ना देखो कोई हर बिन अवर ना देखो कोई नदरी हर निहालिया एहो विस संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर ना कोई कहे नानक हे नेत्र अंध से सतगुर मिलिया दिव दृष्ट होई ए श्रवणो मेरे हो साचै सुनै नो पठाए साचै सुनै नो पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी जित सुनी मंतन हरिया हो वा रसना रस समाणी सच अलख विडाणी ताँ की गत कही ना जाए कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो साचै सुनै नो पठाए हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारा लाए पावनी एक ना दसवां द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाव नाम ने दो तिसदा अंत ना जाई पाया कहे नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया एहो साचा सोहेला साचै कर गावहो गावहो ता सोहेला कर साचै जिथै सदा सच ते आवहे सचो ते आवहे जा तुद पावै गुरमुख जिना बुझावहे एहो सच सबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावहे कहे नानक सच सोहेला सचै कर गावहे आनंद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सर्व सांझी गुरबाणी प्रोग्राम।